0: फक्त 3.99 टक्के ते 9.99 टक्के प्रति ग्रॅम सोन्याच्या दागिन्यांवर. सोबतच हिऱ्यांच्या दागिन्यांच्या मजुरीवर 100% सूट आणि चांदीच्या दागिन्यांवर फ्लॅट 30% सूट. ही मर्यादित ऑफर 11 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत.
1: सणाचा आनंद द्विगुणित करायला आजच भेट द्या चंदूकाका सराफ ज्वेल्स. संपर्क 0796991827.
2: பூத்துக்குலுங்கும் பூக்களின் மெல்லிய மனத்தோடு கோடை பண்பலை நொறுப்பழிய இதில் கதம்ப மலர்கள்.